जी हाँ मेरा प्यार आया और राम जी आप सुन रहे थे होपफुली यू एंजॉयड द सॉन्ग मैंने कोशिश किया था टू गिव यू ए लेटर सॉन्ग और द नेक्स्ट सॉन्ग मैं ढूंढ ही रहा था अनफॉर्चुनेटली आई डोंट लिसन टू सॉन्ग दिस डेज लेकिन एक सॉन्ग भी आया है यूट्यूब पे आज की रात नो इट्स नॉट द ओल्ड वन आई थिंक ये नया वर्जन है विच आई मे नॉट हैव हर्ड प्रॉपरली तो मैंने सोचा चलो हाथों हाथ ये भी हम सुन लेते हैं इट्स 15 ईयर्स अगो सो आई एम सेइंग इट शुडन्ट बी 80 सो कुछ नया ही होगा तो ये सुनते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं हमारे पास कितने समय बचता है इफ वी हैव टाइम वी विल प्ले अ फ्यू मोर सॉन्ग्स फॉर यू अदरवाइज हम फिर मिलेंगे जैसे हमें नेक्स्ट समय मिलता है

दोस्तों सदी है जलसा फिजी रेडियो, होपफुली आपको ये गाना पसंद आया हुआ होगा और यादें कुछ ताज़ा हो चुकी होगी। आपका क्या ख्याल है, विच वन डिड यू प्रेफर, द ओल्ड डोन और जो शाहरुख खान का जो न्यू डोन उसने ट्राई किया था? एनीवे आप सोचते रहिए, लेकिन हम और एक गीत आपके लिए बजा देते हैं बिकॉज वी स्टिल हैव टाइम। और ये सॉन्ग वॉज आपने देखा होगा जो फिल्म आया गया था अमिताभ बच्चन के ऊपर, अभिषेक एंड ऐश्वर्या, दे डिड अ प्रीटी गुड डिसेंट जॉब इन दिस मूवी, स्पेशली अमिताभ बच्चन आई एक्चुअली enjoyed his role. तो चलो ये हम आपको सुनाएंगे और फिर देखते हैं हमारे पास और कितना समय बचता है।

0: 6 p.m. जरूर हमसे जुड़ जाइए और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस और आपके कंट्रीब्यूशंस के लिए और आपको याद दिला दे कि अभी भी समय है हरियाली तीज आपको जाना है तो टेम्पलटन होल 64 केक रोड आप जा सकते हो
1: New Zealand on air supporting local content on ORFM Dunedin
2: Special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fatback drums.